0: Iya, salah satu film ikonik yang sampai hari ini bioskop di India masih putar lagu ini. Film ini warga ya, setelah sekian puluh tahun gitu warga ya, saking ikoniknya film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Baiklah warga, akhirnya Hana pamit saja untuk Pesona Mandalika gelaran hari ini. Terima kasih, mohon maafkan kalau ada salah kata, insya Allah esok bisa ketemu kembali ya. Hana pamit nggih warga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, मऊ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: पैसा बोल सो
4: बोल सो
5: मैं मैं